0: পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে যারা সমুদ্রে অথবা নদীতে মাছ ধরতে যান, তাদের উদ্দেশ্যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা, স্টুডিওর ঘড়িতে এখন 5:59 হয়ে 40 সেকেন্ড। একটু পরেই সকাল 6টায় সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে দিল্লি কেন্দ্রের সংবাদ, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের পরবর্তী ঘোষণা কিছুক্ষণের মধ্যেই।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया

की ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रानी कैकेयी को पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में आई देख मंथरा ने शुभ संवाद सुनाया कि उसने ज्योतिषियों से पूछकर ये जान लिया है कि अंततोगत्वा भरत ही राजा होंगे, किंतु उसके लिए रानी को कुछ उपाय करना पड़ेगा। रानी कैकेयी उपाय जानने को आतुर हो जाती हैं। कहती हैं, तेरे कहने से तो मैं कुएं में छलांग लगा सकती हूँ, पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। यदि तू मेरे ऊपर आने वाले दुख के निवारण के उपाय बता सकती है तो मैं वो उपाय क्यों नहीं करूंगी। मंथरा अपनी स्वामिनी को उन दो वरदानों का स्मरण दिलाती है जो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप में थे। अब समय आ गया है कि दोनों वरदान मांगकर वो अपनी छाती ठंडी कर लें। मांग लो अपने पुत्र के लिए राज्य और राम के लिए वनवास, लेकिन ध्यान रखना, राजा से जो मांगो वो देने के लिए जब सौगंध खा लें तभी मांगना, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। रानी कैकेयी मंथरा के वचन सुनकर कृतकृत्य हो जाती हैं। कुबरी मंथरा उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगती है। कहती हैं, यदि विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बना लूं। ऐसा कह मंथरा द्वारा प्रेरित हो वो कोप भवन में चली जाती हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लहड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम

0: और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
1: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
1: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार

0: के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी, पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगे। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति

0: में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोड मैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मुज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026.

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। सुबह के 9:10:34 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम रस धारा में।

जी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रसधारा में। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। और आज की थीम क्या है रसधारा की दोस्तों? आज जी हाँ, बचपन की हमने बात की। मेरे बचपन तू जा, बचपन जब होता है तो हम बहुत जल्दी बड़ा बड़ा होने की सोचते हैं और सोचते हैं जो बड़े कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, काश हमको पढ़ना ना पड़े, इसलिए चाहते हैं बड़ा होना। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर याद आता है हमें अपना बचपन और गाने गुनगुनाने लगते हैं कि आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। ये बचपन की बात मैं क्यों कर रही हूँ और क्यों चाहती हूँ कि बचपन चला जाए या फिर बचपन फिर से गया हुआ बचपन वापस आ जाए, बात बस थोड़ी सी इतनी सी है कि दोस्तों 12 जून है आज और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बाल श्रम जो कि एक अभिशाप है, कोड है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए और विश्व के लिए, क्योंकि बच्चे जो कि अभी अभी उन्होंने अपने पांव रखे हैं ज़मीन पर, पृथ्वी पर, उन्हें विकसित होने का एक समय दिया जाता है निश्चित रूप से, और उस निश्चित समय के दौरान उनका पूर्ण विकास होता है। लेकिन उस पूर्ण विकास के ना होने से पहले ही यदि उनके कंधों पर जिम्मेदारी डाल दी जाए, उन्हें उनके बचपन में अधूरा छोड़ करके उन्हें जवानी की तरफ, व्यस्कता की तरफ ले जाया जाए, तो फिर वो बचपन बोझ बन जाता है और उनकी जो विकसित अवस्था है वो धीरे धीरे अधूरी रह जाती है, टूट जाती है। दोस्तों आज हम यही बात करने वाले हैं कि बाल श्रम विरोध के प्रति एक जागरूकता जगाई जाती है बाल श्रम निषेध दिवस पर। आज हम इसी की बात करने वाले हैं क्योंकि एक बचपन था जिसमें मम्मी पापा थे, बहन भाई थे, लेकिन उसको यदि हम एक श्रम की तरफ मोड़ दें तो कुछ यूं करा उठता है हमारा बचपन।

0: आज हम बात करेंगे, 12 जून है आज और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। दोस्तों, ये दिन मनाया जाता है विरोध में बाल श्रम के। बाल श्रम एक अमानवीय प्रथा है जिसने बच्चों को उनके बचपन, शिक्षा और गरिमा से वंचित करके आर्थिक लाभ के लिए मजदूरी में झोंक दिया। यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है। बाल श्रम से जुड़ी बुनियादी और कानूनी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम कहीं पर ऐसा जुल्म होते देखें और ऐसे बच्चों को शिकार होते देखें तो हम उसका प्रतिवाद कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार बाल श्रम ऐसा कार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों के आधार पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उन्हें स्कूल जाने से रोकता है, उनके सामान्य विकास में बाधा डालता है। भारत में कानूनी प्रावधान है कि भारत में बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध शोध एवं विनियमन अधिनियम लागू है। 14 वर्ष से कम आयु किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चों से मजदूरी कराना पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। भारत में बाल श्रम के मुद्दे हैं, कानून और नीति है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है जो 14 से 18 वर्ष के इस आयु के वर्ग के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने की अनुमति नहीं देता है। भारत में बाल श्रम के क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या बातें हैं हम बताएंगे, लेकिन पहले आइए सुनवाते हैं आपको एक और गीत। जी हाँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें याद आता है हमारा बचपन।
1: याद

जी हाँ, हमने अपना एक बेहतर बचपन बिताया है और तभी तो हमें अपने बचपन की वो मधुर यादें हमेशा सताती हैं और हम चाहते हैं अपने उस युग में जाना जब बड़े हो चुके हैं। लेकिन सोचो, वो बच्चे जो अभी अभी अभी जिन्होंने बचपन में कदम रखा है और जिनके नन्हे नन्हे हाथ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होटलों में माँज रहे हैं, हमारी छोटी प्लेटें उठाकर ले जा रहे हैं, कहीं उनके थके थके से कदम राह में चलते चले जा रहे हैं और काम करते चले जा रहे हैं, जिनके आँखों के सपने बुझ चुके हैं, जिनके पांव थक चुके हैं, जिनके होठों की हंसी सूख गई है, जिनकी आँखों की रोशनी बुझी बुझी हो गई है, वो बचपन क्या फिर से याद करना चाहेंगे? दोस्तों, बचपन में बच्चों से बाल श्रम करवाना आर्थिक तंगी का कारण भी होता है। माता पिता अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई बार स्कूलों में कमी या जागरूकता की कमी से बच्चों का जुड़ाव पढ़ाई से छूट जाता है। सस्ता श्रम मिलता है, जिसके कारण जो लोग बच्चों को रखते हैं अपने यहाँ काम पर, वो अधिक मुनाफा कमाने की वजह से बच्चों को काम पर रख लेते हैं और जिससे बाल श्रम बढ़ता है। इसके लिए दोषियों के लिए सजा नियुक्त की गई है। जी हाँ, सरकार ने बाल श्रम कानून बनाया और उनका उल्लंघन करने वाले मालिकों के लिए उन्होंने सजा रखी कि 6 महीने से 2 साल तक की जेल में भारत में बाल श्रम मुद्दे कानून और नीति है। दोस्तों, 20,000 से लेकर 50,000 तक का भारी जुर्माना भारत में बाल श्रम है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस इसी गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है। और इसके खिलाफ यदि आप करना चाहते हैं शिकायत, तो भारत सरकार की वो कौन सा पोर्टल है बताऊंगी, लेकिन पहले तो बच्चों के लिए एक गीत बजा लें।

0: दोस्तों, बाल श्रम की अधिकता किसी देश की आर्थिक स्थिति के लिए हानिकारक मानी जाती है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग में आवश्यक कौशल से युक्त शिक्षित वर्ग हो, ना कि बच्चों को हम अपने यहाँ भर्ती कर लें। शिक्षित बच्चे भविष्य में देश की पूंजी में योगदान देंगे, और यदि बच्चे शिक्षित नहीं होते तो इससे मानव पूंजी को नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, बाल श्रम को अवैध माना गया है इसी कारण से कि बाल श्रम बच्चों को शिक्षित होने से, उनके संपूर्ण विकास को होने से रोकता है। और बाल श्रम के कारण हमने जैसे कि बताया आपको, गरीबी होना तो है ही, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से कारण हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो रोज़गार रखने वाले लोग हैं वो भी कम पैसा जिससे दिया जा सके बच्चों को रख लेते हैं। तो हम यदि ऐसा बाल श्रम होता कहीं देखें तो भारत सरकार के पोर्टल पेंसिल में जाकर के हम इसका विरोध कर सकते हैं और उनके जो रखे हुए हैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
1: किकड़ तुकड़ भंबे भो 80-90 पूरा 100 गलोटा तीतर मोटा

बिल्कुल दोस्तों, बाल श्रम के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए यदि आप तैयार हैं तो बस ये कहना ही होगा कि ये जो बाल श्रम है नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ आप कर सकते हैं चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर या भारत सरकार के पेंसिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज। जी हाँ, इसके अलावा स्थानीय पुलिस, आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत करके बाल श्रम की जानकारी दे सकते हैं। ई बाल निदान, यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का आधिकारिक पोर्टल है और आप ई बाल निदान पर जाकर भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। तभी आप किसी यदि विशिष्ट स्थान या शहर या दुकान फैक्ट्री में ऐसा देखते हैं कि वहाँ बाल श्रम कराया जा रहा है तो वहाँ की जानकारी इन सभी स्थानों पर दे सकते हैं, स्थानीय पुलिस स्टेशन, ई बाल निदान पर, साथ ही पेंसिल पोर्टल जो कि भारत सरकार द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए बनाया गया है, टोल फ्री नंबर चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। तभी तो हंसते हंसते कटेंगे बच्चों के रास्ते। तो आज हमने बात की बाल श्रम निदान दिवस की।

और दोस्तों कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश करने का वक्त आ चला है और आपकी दोस्त सविता इस अंतिम गीत के साथ आपसे चाहती है इजाजत। मुलाकात होगी 12 बजे हिंदी पत्रिका कार्यक्रम सुरभि में। तब तक के लिए अब हमें इजाजत दीजिए। आपका दिन खुश हो, मंगलमय हो, इसी दुआ के साथ चलते चलते अंतिम गीत बम बम भोले चलते चलते ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू की उपस्थिति में ये पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि जालसाज आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रोजगार पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं और पीड़ितों के चेहरे का डेटा एकत्र करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम

और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनीतिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। ऊर्जा सुरक्षा के विषय पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। इस दौरान वे देहरादून में 132 एकड़ क्षेत्र में बने राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IAM में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। यात्रा के दौरान श्री गोयल ज्यूरिख में स्विस कंपनियों और निवेशकों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश विस्तार के अवसरों पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के तुगलकाबाद क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि तड़के करीब 2:25 पर सूचना मिलते ही 8 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और 5 लोगों को बचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध समाप्ति वार्ता में मिली सफलता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध को और बढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस अचानक बदलाव का कारण बताया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

से हूँ कोसों दूर, सुबह से काम पे जाता हूँ, शाम को वापस आता हूँ। बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ हर साल 12 जून यानी आज के दिन दुनिया भर में चाइल्ड लेबर डे के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद बच्चा मजदूरी की लानत के बारे में अवामी शऊर बेदार करना और मुतासरा बच्चों को इसके हकूक, तालीम और महफूज बचपन फराहम करने के लिए इकदाम करना है। इस दिन का आगाज बैनुल अक्वामी अदारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल 2002 में तय किया गया था। इसके आगाज का अहम तरीन मकसद दुनिया भर में लाखों ऐसे बच्चों की हालत जार पर रोशनी डालना है जो मुशक्कत की चक्की में पिस रहे हैं और इन्हें बुनियादी तालीम से महरूम रखा जाता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 16 करोड़ से ज़ायद बच्चे मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हैं। इनमें से 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है, जिन्हें ख़तरनाक और गैर कानूनी कामों में भी झोंक दिया जाता है। गुर्बत और महंगाई की बढ़ती मार के बास चाइल्ड लेबर की शरह ख़तरनाक तरीके से बुलंद हो रही है। बच्चा मजदूरी के नुकसानात की बातें करें तो तालीम से दूरी सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो समाज को आइंदा जो है वो क़यादत करेंगे, वो अगर तालीम से पिछड़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नुकसान हमारा ही है। बच्चे अपने खेलने और सीखने की उम्र में मजदूरी करते हैं, जिससे इनकी जहनी नशोनुमा रुक जाती है। और अगर बात खतरात की करें तो गैर कानूनी फैक्ट्रियों, ईंटों के भट्टों में और ज़रई शोबों में बच्चों की जिस्मानी, जहनी और बाज़ औक़ात जिनसी इस्तेहसाल का भी इन्हें सामना करना पड़ता है। आइए इसी के साथ जान लेते हैं कि कानूनी और हुकूमती इकदामात क्या हैं। बैनुल अक्वामी कन्वेंशन के मुताबिक आम और ख़तरनाक काम करने के लिए मुलाजिम रखे जाने वाले बच्चों की ज़िंदगी ना सिर्फ ख़तरे में पड़ती है बल्कि इससे जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर होती है। हुकूमत हिंद की जानिब से बच्चा मजदूरी की लानत से समाज को पाक करने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि बच्चों को इनका खूबसूरत बचपन दोबारा से वापस मिल सके और तालीम हासिल करके समाज के लिए बेशकीमत असासा बन सके। हमारी हुकूमत और भी बहुत सारे इकदाम कर रही है और ऐसे बच्चों को जो बदकिस्मती से मजदूरी के लानत में फंस गए हैं उन्हें वहाँ से निकाल कर दोबारा से उनको ताउन के ज़रिया उनके तालीम का इंतज़ाम करती है, उनकी बेहतर परवरिश और रहाइश का भी नज़्म करती है। मौसिज़ हमीन, ये था आज का वो आईना जिसे आप रूबरू हुए। स्टूडियो की घड़ी में सुबह 10:20:42 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन चैनल संचेता पर सरफराज के साथ। कहते हैं कि दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबिस्ता है, दिल भी पागल है कि उस शख्स से वाबिस्ता है जो किसी और का होने दे ना अपना रखे। आइए सुनवाते हैं खूबसूरत सा नगमा, दो कलियां फिल्म का, आवाज़ है लता मंगेशकर के, मौसीकार रवि और नगमा निगार साहिर लुधियानवी।

मौजूद सामिन, आज हम बातें करेंगे एक इंतहाई हसास मौजू यानी बच्चा मजदूरों के खिलाफ आलमी दिन की। अर्ज किया है, मैं हूँ एक बच्चा मजदूर, बचपन

जी हाँ दोस्तों, बच्चे मन के सच्चे। दोस्तों बचपन का अपना ही एक मज़ा है, लिहाजा इनका एहतराम होना चाहिए और इन्हें बेशुमार शफकत और प्यार से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि घर की असल रौनक कहिए, घर की असल जीनत कहिए, ये बच्चों के दम से ही है, क्योंकि इनके बगैर वो घर घर नहीं रहता, बिल्कुल सूना सा रहता है और बेरौनक घर की कोई अपनी अहमियत नहीं होती। ये ना सिर्फ बच्चे जो है वो घर के गुलकारी भरते हैं और बहुत हद तक वो अपने शरारतों से जो है वो वालदैन को और घर वाले को जो है खुश रखते हैं, लिहाजा इनका ख्याल हद दर्जा रखना चाहिए। कहते हैं कि तुम्हारी राह में नज़रें जमा के बैठे हैं, तुम्ही को दिल में हम बसा के बैठे हैं, तुम्हारी दीद से मिलती है खुशी हमको, तुम्हारे लिए ही दिल को सजाए बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा अनुराधा पोडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में। नगमा नगार हैं फैज़ अनवर, मौसीकार नदीम श्रवण और फिल्म का नाम है दिल है के मानता ही नहीं।

जुर्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान हैं, शोलों को हवा देते हैं। हमसे दीवाने कहीं तरके वफा करते हैं, जान जाने की रहे बात निभा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच्चे आशिकों की यही तो पहचान है, यही तो इलामत है। मौजूद में

नगमों की बारात सजाने के साथ साथ अब बारी है मंजरनामे की। जी हाँ, आज आप फलाही स्कीम यानी गरीब नवाज रोजगार स्कीम के बारे में जानकारियाँ समाप्त फरमाएंगे। दोस्तों, हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती बिरादरियों के नौजवानों को रोजगार के काबिल बनाने के लिए शुरू किया गया एक अहम तरबियती प्रोग्राम है, जिसका मकसद नौजवानों को कलील मुद्दती हुनरमंदी यानी शॉर्ट टाइम स्किल डेवलपमेंट की तरबियत फराहम करना है, ताकि वो रोज़गार हासिल कर सके। सच है दोस्तों, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और इस तरक्की में यकीनी तौर पर ये ज़रूरी है कि सारे तबके, सारी बिरादरियां जो है एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। ये योजना हुकूमत हिंद की जानिब से वज़रात अक़लियती उमूर के तहत एक फलाही प्रोग्राम है, जिसे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन नाफिज़ करती है, जो कोर्स के ज़रिया अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाती है। इस स्कीम का हदफ अक़लियती नौजवानों की पेशा वाराना सलाहियतों को निखारना है, ताकि वो मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक रोज़गार हासिल कर सकें। जहाँ तक इसकी मुद्दत की बात है, तो इसमें रोज़गार पर मरकूज कलील मुद्दती कोर्सेज शामिल हैं, और अगर अमल आवरी की बात करें तो ये बताता चलूँ कि यह स्कीम मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम चलाई जाती है। मुस्तफीद होने वाले बरादरियों की बात करें तो भारत की तस्लीम शुदा अकलियती बरादरियों यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन मजहब के तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान इसमें शामिल हो सकते हैं। दीगर मुतालका स्कीमें अकलियती नौजवानों की तरक्की और रोज़गार के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से दीगर माविन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। पेशा वाराना तरबियत का जहां तक ताल्लुक है, तो उम्मीदवारों को मार्केट की तलब के मुताबिक तकनीकी और पेशा वाराना तरबियत दी जाती है। सच है दोस्तों, क्योंकि अगर आप वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर शाना बशाना नहीं चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ज़माना रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, और ऐसे में हर एक को इस बात की ख्वाहिश होती है कि वो ज़माने के साथ कदम ब कदम मिला के चले। अगर हम जदीद तकाज़ों को पूरा किए बगैर सिर्फ फरसूदा निज़ाम को ही अपनाते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम पीछे रह जाएंगे, और इससे क्या होगा कि मुल्क की तरक्की में जो है वो सुस्ती आएगी, रुकावट पैदा होगी। इसलिए यही वजह है कि नौजवानों को वक्त के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक जो है इनकी सलाहियतों को निखारा जाता है, और ख़ुद रोज़गार या प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत के काबिल बनाया जाता है। अहलियत की बातें करें तो दरख्वास्त दहिंदगा का ताल्लुक भारत के नोटिफाइड अकलियती बरादरियों से होना चाहिए। उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत कोर्स की नौयत पर मुनहसर है। जी हाँ, आप जिस तरह का वो कोर्स लेना चाहेंगे, उसी एतबार से तालीम की जो है मियार और अहलियत रखी गई है। दोस्तों, अभी आप मंजरनामे के तहत समाअत फरमा रहे थे गरीब नवाज रोज़गार स्कीम से मुतालिक अहम जानकारियाँ, और इसी के साथ अर्ज़ किया है, एक उम्र कट गई है इसी इश्तराब में वो कौन शख्स था जिसे देखा था ख्वाब में। दोस्तों, ख्वाब तो बहरहाल ख्वाब हैं, क्यों ना हकीकत के साथ ज़िंदगी के मफहूम को समझें। आइए सुनवाते हैं आपको एक और खूबसूरत सा नगमा। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, मौसिकार खयाम, नगमा निगार गुलजार, और फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। जी हाँ दोस्तों, अंजाम ख्वाब कुछ भी हो, राह इश्क में हर आशिक रंगीन ख्वाब ही देखा करता है। अगर आप भी मर्द इश्क में मुब्तला हैं तो ज़रूर बताएं अपने ख्वाब के बारे में। फ़िलहाल पेश है एक और खूबसूरत सा नगमा। कहते हैं, जाने इस शख्स को ये कैसा हुनर आता है, जाने इस शख्स को ये कैसा हुनर आता है, रात होते ही आँखों में उतर आता है। मैं इसके ख्याल से निकलूं तो कहाँ जाऊं, वो मेरी सोच के हर रास्ते पे नज़र आता है। आइए अब सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा फिल्म सूरज से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर का। नगमा निगाह हसद जयपुर।

जाने किसकी बुरी नजर लगी, प्यार प्यार न रहा, जज्बात सर्द पड़े और फासले ही फासले बने। कहते हैं कि फासले ऐसे भी होंगे।

0: ये कभी सोचा न था, सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 10:47 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता की उर्दू पेशकश अंजुमन चैनल संचयता पर सरफराज के साथ। इसी के साथ अब पेश है आज की खसूसी पेशकश साइंस खेल खेल में। माजी सामीन, आज इस पेशकश में आप मुश्ताक अहमद से हीट एंड टेम्परेचर यानी हरारत और दर्जा हरारत के ताल्लुक से अहम जानकारियां आकाशवाणी के इस खास पेशकश में समाप्त फरमाएंगे। पेश है साइंस खेल खेल में।
1: सामिन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंस खेल खेल में, जहां इल्म भी है, तफरी भी है और हैरतों का जहां भी। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि पानी के ताल्लुक से रोजमर्रा में क्या क्या जरूरियात है और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, और आज हम किसी और मौजू पे बात करेंगे साइंस खेल खेल में। देखते हैं आज हमारे उस्ताद क्या सिखाते हैं। तो हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं सरकारी स्कूल के टीचर मुश्ताक अहमद साहब। सर, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में खैर मकदम है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सर, आज आप हमारे सामीन को क्या बताएंगे, किस मौजू पे बात करेंगे?
2: आज जो है हम लोग जो है सामीन हजरात को हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बताएं।
1: जी, हीट एंड टेम्परेचर।
2: जी, आज मौजूदा दौर में हम लोग देखते हैं तो हर तरफ जो है हीट एंड टेम्परेचर से हम लोग घिरे हुए।
1: जी बिल्कुल।
2: जी, तो टेम्परेचर बॉडी का होता है, हीट क्या है, ये बच्चों को समझाना है। ये कामेन जो हजरात हैं, आप समझने की कोशिश करें कि हीट क्या होता है। सबसे पहले हीट समझा जाए, उसके बाद उसको टेम्परेचर से को रिलेट कर देंगे। हीट क्या है? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी।
1: जी
2: ठीक है, एक तरह का ये एनर्जी है, और ये अगर बॉडी के अंदर हीट है तो हीट आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर आपका जा रही है तो हीट के जाने में हम देखते हैं टेम्परेचर का वजूद होता है। कि अब जैसे ही हीट है, यानी अगर इसको हम यूं कहें कि हीट सबब है और टेम्परेचर उसका असर है। कि टेम्परेचर क्या है? कि हरारती हालत है किसी चीज का। अगर हम किसी बॉडी को पकड़ रहे हैं, अगर वो हमको गर्म लग रहा है तो हम कहेंगे कि वो मेरे टेम्परेचर उसका ज्यादा है। और अगर हम पकड़ रहे हैं उस चीज को, अगर थोड़ा ठंडा लग रहा है तो हम कहेंगे कि उसका टेम्परेचर कम है।
1: कम है।
2: तो ये टेम्परेचर क्या है? किसी भी बॉडी का हरारती हालत है। अब इसको समझना कि हरारती हालत जो है ये गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है ना। कुछ चीजें ठंडी हैं, कुछ चीजें गर्म हैं। और हम जब किसी चीज को छू रहे हैं तो हमको ठंडा महसूस हो रहा है या गर्म महसूस हो रहा है, इसको समझने की क्या है कि बच्चों इसको और सामीन हजरात इसको समझे कि जैसे हम उसको टच करते हैं ना, तो अगर वो गर्म चीजें हैं तो उसकी गर्मी मेरे अंदर आने लगती है और मेरी जो सर्दी है उधर चली जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से हमको क्या है कि वो चीजें जो है हमको गर्म महसूस। और उसके ऑपोजिट, उसके बरक्स, अगर हम किसी ठंडी चीज को छूते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। ये दो बुनियादी बातें हैं टेम्परेचर और हीट के ताल्लुक से समझना। कि इसको अगर हम समझें कि हीट एंड टेम्परेचर में ये ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, ठीक है, तो हीट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हमें बच्चों को समझाना कि हीट जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे हम पर को मुतासिर कर रही है। अगर देखा जाए कि हीट ना हो तो फिर खाना नहीं बनेगा।
1: हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी
2: कि
1: बात है।
2: अगर हम खाना बनाना चाह रहे हैं तो हमको हीट चाहिए। चाहे आप जिस जराए से दें उसको, चाहे ओवन में आप पकाएं, चूल्हे पर पकाएं, आप उसको किसी तरीके से भी पकाएं, आपको हीट चाहिए। और जहां हीट आएगा वहां फिर टेम्परेचर का कंसेप्ट चलाएगा खुद से कि भाई हम कितना टेम्परेचर तब पकाए, है ना। तो उसके लिए हम लोग देखें अभी मौजूदा दौर में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इतने सामान निकल गए हैं कि प्रेशर कुकर भी है। तो प्रेशर कुकर एक तो अपने आप में पुराने दौर का एक बहुत बड़ा ईजाद है। आज के दौर जदीद में देखिएगा कि राइस कुकर बना हुआ है। तो उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक से कन्वर्ट करके 10 मिनट लिख कर उसमें चावल डाल दिया, खुद ब खुद पक गया चावल
1: जी,
2: है ना। तो उसको टेम्परेचर मेंटेन करना या इस तरीके से बनाना, ये सारी चीजें जो हैं, ये टेम्परेचर हीट का जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा, मतलब बनाना तो ठीक है हम लोग बना, तो ये बनाना बजायर बनाना है, लेकिन हमको लगता है कि पहले की औरतें ज्यादा मतलब साइंटिफिक थी, कि वो लोग समझती थी कि कहां चीजें कहां रखने से उनको क्या होगा। जैसे गांव गया, गांव में मैंने देखा कि चूल्हा है,

0: मिट्टी का, और उसी मिट्टी से बना हुआ एक फ्रिज नुमा कबाड़ है। तो पता चला क्या कि हम लोग जो है ना इसमें खाना जो है ना रख देते हैं, इसमें सेफ रहता है खाना, कि वो क्या है कि वो मोतदल टेम्परेचर पर रहता है जी भाई, उसका मिट्टी की वजह से। अब मिट्टी में क्या खसूसियत है कि मिट्टी में ये खसूसियत है कि ये जल गर्म नहीं होगा। अब देखिएगा जो पुराने घर होते हैं और मिट्टी का घर और एक ईंट का घर, दोनों में फर्क है
1: जी।
0: अगर गर्मी के दिन में हम लोग मिट्टी के घर में रहेंगे तो हमको इतनी गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन अगर ईंट के घर में रहेंगे तो गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि ईंट के घर में क्या है कि जो रोशनी ईंट को मिल रही है वो ऑब्जर्व कर ले रहा है, और उसके अंदर वो जो हिद्दत है, वो शिद्दत है, जो टेम्परेचर है, वो अंदर ट्रांसफर कर देता है। और मिट्टी चूंकि बैड कंडक्टर होने की वजह से क्या है कि वो हीट तो ले रहा है लेकिन ट्रांसमिट नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप वो मिट्टी के घर में अपने आप को कंफर्टेबल समझिए कि भाई हम कंफर्टेबल हैं। अगर बच्चों को हम लोग इस तरीके से देखें कि मिट्टी का घर है और ईंट का घर है, तो पहले बिचाली वाला भी घर होता था, देखिए
1: हाँ,
0: तो बिचाली वाला जो घर है उसमें भी ये हीट एंड टेम्परेचर काम आता है, क्योंकि वो भी बैड कंडक्टर होता है। तो देखिएगा कि बर्फ जो है, बर्फ जब लाते हैं तो उसको छोटा छोटा क्या करते हैं,
1: कुछ बुरादे
0: बुरादे होते हैं
1: डालकर रखा जाता
0: ताकि पिघले नहीं बर्फ। तो ये क्या लॉजिक है, इसमें हीट एंड टेम्परेचर कहाँ है? इसमें भी यही है कि उसके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, सामने जो मेरा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसको बचाना है, उसको बचाने के लिए छोटे छोटे बुरादे जो है हम डाल दिए, जो बैड कंडक्टर होते हैं वो आपको हीट को बाहर का अंदर आने नहीं देगा, और अंदर का जो सर्दी है उसको बाहर जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से बर्फ ज्यादा देर तक अपनी हालत में मुअय्यन रह सकता है। ये बच्चों को हीट के ताल्लुक से बताना। देखिए पुराने दौर में हमारी अम्मा जो है, हम देखें कि हांडी जो है, हांडी में ना नीचे लेप लगाती थी। ये जो लेप लगाना ये क्या है कि क्यों लेप लगाते हैं, जैसे बहुत सारा हम लोग डेग वगैरह भी देखते हैं बड़े बड़े, तो उसमें नीचे में लेप
1: लगाया जाता है।
0: तो क्या है उसको समझना कि ये क्या है कि हीट को रिटेन करने के लिए, कि अगर हम लोग एक चूल्हे पर अगर हांडी को चला रहे हैं तो हीट हमको ज्यादा चाहिए कम वक्त में, तो रिटेंटिविटी के लिए क्या किया जाता है कि मिट्टी का लेप लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब वो हीट रिटेन कर लिया और उसमें खाना वगैरह पक रहा है तो ज्यादा जल्दी पक जाता। अभी प्रेशर कुकर का दौर, लेकिन जिस वक्त प्रेशर कुकर नहीं था या बड़े बड़े प्रेशर कुकर नहीं होते हैं जिसमें डेग वगैरह में खाना बनते हैं, तो उसमें अगर हम ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि ज्यादा देर तक हमारा हीट रहता है और वो रिटेंटिविटी कहलाता है कि हीट को रिटेन कर पाए ज्यादा देर तक। तो ये मिट्टी का लेप लगाने से क्या होगा कि हमारा जो है हीट जो है वो रिटेन कर पाएगा और हमारा खाना भी क्या होगा जल्द से जल्द पक जाएगा। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में आप और हम मुशाहदा करते हैं कि हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से जुदा नहीं है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में घंटों बात की जा सकती है, और इसमें बहुत सारे लॉज हैं जो साइंस के ताल्लुक से, अभी मैंने जो छोटी छोटी बातें बताई वो सारी की सारी साइंस है
1: जी,
0: ठीक है। उसमें रेडिएशन होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, तो ये क्या चीज है, पानी का बॉयल होना, पानी कैसे बॉयल हो गया, तो ये रेडिएशन कंडक्शन ये हीट एंड टेम्परेचर से ही ताल्लुक रखते हैं। तो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लाए तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा इर्द गिर्द जो भी अतराफ में चीजें हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग हीट और टेम्परेचर को यूज करते हैं।
1: मौसम की बात करें अगर, तो हीट और टेम्परेचर का क्या असर रहता
0: है? हीट एंड टेम्परेचर अगर मौसम के ताल्लुक से बात करें कि मौसम अभी जैसे ऐसा मौसम अक्टूबर की थोड़ा टेम्परेचर ठीक हुआ है, ठीक है, तो टेम्परेचर का इसके यही है कि टेम्परेचर चूंकि बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में, तो मौसम में देखिएगा एब्रप्ट एक्सचेंज आता है कि भाई मई का महीना आया और गर्मी एकदम बढ़ गई
1: बहुत तेज गर्मी,
0: तेज, और यही दिसंबर का महीना आया तो सर्दी हो जाती है। जरा इस बात को गौर किया जाए कि गर्मी और सर्दी में मौसमों का ताल्लुक जो है, अगर हम इसको ले और फिर इसको हीट एंड टेम्परेचर से जोड़े, तो ये कुदरत का एक निजाम है कि गौर से देखिए कि टेम्परेचर जो है सर्दी के दिनों में डाउन हो जाता है, लेकिन सूरज जो है फुल फ्लेज में ही निकल रहा है, सूरज तो अपनी जगह पर कायम है, लेकिन क्या है कि हवाएं जो है, ये जो आपने कहा कि मौसम का ताल्लुक जो है

0: टेम्परेचर कम हो गया या ज्यादा हो गया, इन हवाओं का ताल्लुक, जब सर्द हवाएं चलने लगती हैं तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है, और जब ये हवाएं जो है गर्म होती हैं तो टेम्परेचर को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। और गर्मी में चूंकि हमारा यहाँ का मौसम कलकत्ते का ऐसा है कि हम लोग हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में रहते हैं
1: जी, या हमारा जो मौसम जरा गर्म होता है,
0: गर्म और साथ ही साथ बेचैनी वाली गर्मी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है ना, तो ये बेचैनी जो है पसीना ज्यादा आएगा आपको क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और ये ह्यूमिडिटी ज्यादा है कि क्या माने हैं, ये उसको अगर साइंसी तरीके से समझा जाए कि आपका पानी जो है, वाटर पार्टिकल्स जो एयर में है छोटे छोटे, जो ये एयर पार्टिकल्स जो छोटे छोटे हैं उसमें पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसको आबी बुखारात बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जब आपको सैरशुदा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, तो अब आपको और मजीद उसके अंदर पानी लेने की सलाहियत नहीं होती। गर्मी में यही मामला होता है। गर्मी में क्या होता है कि हमारे जिस्म से पसीना तो निकल रहा है लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एयर ऑलरेडी सैचुरेटेड है, हॉट भी है और ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वो हमारा ह्यूमिडिटी ले नहीं पाता है, हमारे बदन से जो गर्मी निकल रही है उसको वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें गर्मी ज्यादा लगती है और पसीना भी ज्यादा आता है। इसके बरक्स अगर आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली में क्या है कि हॉट कंडीशन है बट ह्यूमिडिटी नहीं है,
1: ह्यूमिडिटी कम है,
0: ठीक है, ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से क्या है, वहाँ पसीना नहीं आएगा लेकिन लू वाली जो धूप है
1: वो
0: चलेगी, तो ये टेम्परेचर वहां भी बढ़ा हुआ है और कलकत्ते का भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन कलकत्ते का टेम्परेचर बढ़ा भी है और बहुत ज्यादा थोड़ा तकलीफ देह है बनस्बत के दिल्ली के। तो ये टेम्परेचर का ताल्लुक जो है वो एनवायरमेंट में हवा के ताल्लुक से होता है कि हवा के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो आबी बुखारात जिसको बोलते हैं उसमें अगर पानी लेने की सलाहियत है तो आपका देखिएगा पसीना ऑब्जर्व हो जाएगा और जल्द आपको रिलीफ मिलेगी। जैसे हम पसीना से सराबोर होकर अगर पंखा के नीचे बैठते हैं तो देखते अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं,
1: बहुत ठंडा फील होता है।
0: तो ये पूरा का पूरा हीट एंड टेम्परेचर पर है कि आपके बॉडी का जो ठंडकपन कैसे आया कि वो जो पसीना निकला था वो बाहर आ गया जिसकी वजह से आपका बॉडी कूल हो गया। कूल माने आपका टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होने की वजह से आपको क्या होगा, थोड़ा सा आप रिलीफ महसूस कीजिएगा पंखा के नीचे, यही बाहर फिर निकलेंगे तो हमें फिर दुश्वारी
1: महसूस होगी।
0: जी, आज की ये जो टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें आई।
1: जी बिल्कुल, साइंस के ताल्लुक से आपने हमें हीट और टेम्परेचर के बारे में समझाया और सिखाया। इस प्रोग्राम का मकसद है कि हम साइंस को खेल खेल में अपने सामीन को समझाएं, साइंस सिर्फ याद न की जाए बल्कि समझा जाए, उसे समझना जरूरी है, उसका तजुर्बा करना बहुत जरूरी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सामीन को बहुत कुछ सिखाया,
0: बहुत शुक्रिया।
2: अभी आप साइंस खेल खेल में मुश्ताक अहमद से हीट एंड टेम्परेचर के ताल्लुक से जानकारियां समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान सरफराज को दीजिए इजाजत, सुबह खैर।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। दोस्तों 12:41 आपकी दोस्त सविता सभी दोस्तों का स्वागत करती है कार्यक्रम सुरभि में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चर्चाएं से। चर्चाएं में आज हम बात करेंगे विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर वर्ष 12 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास के अवसर प्रदान करना। बाल श्रम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होता है। इस दिवस की शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। ILO ने 1999 में वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को अपनाया। बाल श्रम के यदि हम परिभाषा की बात करें तो जिसे करने के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, जो उसकी आयु के अनुपात में अत्यधिक कठिन, खतरनाक या शोषणकारी होता है। ILO के अनुसार 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे जब ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं तो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को बाधित करते हैं, तो यह बाल श्रम कहलाता है। दोस्तों बाल श्रम में अनेक नियम बनाए गए और यह बाल श्रम उन्मूलन के लिए सुझाव दिए गए कि शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन, गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता होनी चाहिए, जागरूकता अभियान हो, लोगों के बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए, कानूनों का सख्त प्रवर्तन, बाल श्रम में संलग्न नियोक्ताओं पर कठोर कार्रवाई हो, NGO और नागरिक समाज का सहयोग जरूरी है। तो दोस्तों बाल श्रम सुधारने के लिए बहुत कई कानून बनाए गए, जिसमें कि बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए खतरनाक उद्योगों से काम करने पर प्रतिबंध है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, पोक्सो एक्ट 2012, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, पुनर्वास और शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों का संचालन। इस प्रकार से बाल श्रम निषेध दिवस जो कि विश्व भर में मनाया जाता है, इसके प्रति लोगों के बीच में जागरूकता उत्पन्न करना ही इस दिवस का उद्देश्य है, ताकि लोग इस अमानवीय जो अत्याचार है उससे खुद को दूर रखें। दोस्तों, अभी हमने सुरभि कार्यक्रम में चर्चा में बात की विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाएंगे एक गीत और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पहल में।

0: होता है।
1: दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सुरभि में और बढ़ते हैं आगे पहल कार्यक्रम की ओर। भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई अनेक पहलों में से आइए आज हम बात करेंगे शहरी बफ संपत्ति विकास योजना की। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से केंद्रीय बफ परिषद द्वारा 1974-75 से कार्यान्वित की जा रही है शहरी बफ संपत्ति विकास योजना का उद्देश्य बफ संस्थानों और बोर्डों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है। इसके लिए संस्थानों

में वृद्धि, संसाधनों में वृद्धि की आवश्यकता है। योजना का मुख्य लक्ष्य रिक्त वफ संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाना और ऐसी जमीनों पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाएं विकसित करना है ताकि स्थायी आय उत्पन्न हो सके और कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तार हो सके। भारत सरकार ने इसके लिए जो फायदे हैं, इससे ब्याज मुक्त ऋण सहायता मिलेगी तथा परियोजना में अवसंरचना विकास के लिए ऋण सहायता होगी। वक्फ भूमि पर वाणिज्यिक परिसरों, विवाह हॉलों, अस्पतालों, शीत भंडारण इकाइयों जैसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य वक्फ बोर्डों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता है। मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति से वक्फ संपत्तियों पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अनुदान सहायता करता है। साथ ही इसके लिए जिन लोगों को सुविधा प्राप्त हो सकती है उसके पात्र व्यक्ति होते हैं सभी वक्फ बोर्ड और पंजीकृत वक्फ संस्थाएं जिसके पास विकसित की जाने वाली संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व है और जो केंद्रीय वक्फ परिषद की राय में दिवालिया नहीं है या अन्यथा उपयुक्त नहीं है ब्याज मुक्त ऋण के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थित वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। विश्व बैंक और वक्फ संस्थानों को जनहित में ब्याज मुक्त ऋण सहायता या अनुदान सहायता CWC द्वारा अनुमोदित विशिष्ट विकास परियोजना या गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाएगी। साथ ही दोस्तों इसके लिए जो आवेदन कर सकते हैं उसमें है कि योजना के तहत ऋण चाहने वाले एजेंसी को निर्धारित आवेदन पत्र का उपयोग करके संबंधित वक्फ बोर्ड को आवेदन करना चाहिए जिसमें सभी आवश्यक विवरण प्रदान किए गए हों। आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करें या संबंधित वक्फ बोर्ड कार्यालय से प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक जानकारी सही रूप से भरी गई हो। भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ पते पर जमा करवाएं। विकसित की जाने वाली भूमि का स्थल मानचित्र जिसमें सीमाएं दर्शाई गई हों, आवश्यक दस्तावेज जो चाहिए, किसी योग्य अभियंता वास्तुकार द्वारा तैयार की गई निर्माण योजना जिसे नगरपालिका सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृत किया गया हो या विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अन्य योजना। इसके अलावा जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो हैं कि निर्माण या अन्य मामलों की लागत का मदवार अनुमानित विवरण, योजना की लाभप्रदता दर्शाने वाला एक विवरण, साथ ही प्रस्तावित वक्फ संपत्ति के बाजार मूल्य का विवरण जो राजस्व प्राधिकरण के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा विधिवत तैयार किया गया हो, साथ ही उधारकर्ता के संपत्ति पर स्वामित्व को स्थापित करने के लिए वक्फ अभिलेख, राजस्व और नगर पालिका अभिलेख, बोर्ड का वक्फ रजिस्टर आदि जैसे दस्तावेजों की प्रतियां, साथ ही संपत्ति जिस स्थान पर स्थित है उस स्थान के सक्षम प्राधिकारी या राज्य वक्फ बोर्ड से गैर भार प्रमाण पत्र, आवश्यकता अनुसार कोई अन्य दस्तावेज। तो दोस्तों जिन दस्तावेजों की आवश्यकता थी वो हमने आपके साथ साझा किए। हमने सुरभि कार्यक्रम में पहल के अंतर्गत आज बात की शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना की। ये आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है, आप सुन रहे कार्यक्रम सुरभि, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और गीत।

आइए दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं एक और गीत, लेकिन चलते चलते अब आपकी दोस्त सविता अब आपसे लेगी इजाज़त, मुलाकात होगी फिर ऐसे ही किसी दिन। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरभि और मैं थी आपके साथ सविता, ये है संचेता चैनल। सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म लावा से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: short while from now, we will connect you to Delhi. Stay tuned and I'll get back to you right after.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक भी उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पूर्व टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सरकार ने संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों पर भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक सहमति बनाने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की स्वागत करता है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का निधन हो गया है। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। भारत की पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन की ताइपेई की चेन सू यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. He added that the government is actively supporting self-help groups, which are going a long way in making women financially independent. The government has restricted institutional, industrial and commercial customers from buying motor spirit and high-speed diesel from retail outlets and asked them to source their requirements from their own consumer pump. The decision has been taken to prevent local shortages amid disruptions in global supply chains caused by the ongoing crisis in West Asia. In a notification, the Petroleum and Natural Gas Ministry said restrictions will be in place for up to 90 days. The retail outlets have been directed to sell up to 200 litres of high-speed diesel to a customer per day to prevent bulk purchase. Union Home Minister Amit Shah is chairing a high-level meeting to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra in New Delhi. Army Chief General Upendra Dwivedi, National Security Advisor Ajit Doval, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir Manoj Sinha, Directors General of CRPF, BSF, CISF, ITBP and the SSB are present in the meeting. The Amarnath Yatra will begin on the 3rd of July and conclude on the 28th of August. The Information and Broadcasting Ministry has released the draft Telecommunication Rules 2026 pertaining to television, radio and related services for public consultation. The draft rules have been framed to consolidate the various guidelines issued for television and radio services under the previous Telegraph Act 1885 within the framework of the newly enacted Telecommunications Act 2023. The National Testing Agency, NTA, has extended the examination window by 15 minutes from 180 minutes to 195 minutes for re-NET UG 2026, scheduled to be held on the 21st of this month. The new timings will be 2 p.m. to 5:15 p.m. The revised examination window includes the time required for mandatory examination formalities such as signing of attendance sheets and other invigilation procedures. In Pakistan-occupied Kashmir POK, 16 people were killed and 37 others wounded as Pakistani army opened fire from AK-47 rifles on thousands of unarmed protesters in Eidgah ground yesterday. Although the demonstration started peacefully, demanding affordable flour, rice, electricity and basic rights, the scene soon turned violent, with the Pakistani army unleashing gunfire on the crowd. Around 60 to 70,000 people had assembled in Rawalkot to raise slogans against Pakistan's continued occupation and policies in the region. United Nations Secretary General Antonio Guterres and Secretary General of the

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन

0: कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें

0: तीन भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়া ওয়েভ 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন সংবাদ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्री अमरनाथ यात्रा करने के भक्तों के सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में ये बात कही। गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्री शाह ने तीर्थ यात्रा मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयास करने चाहिए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वे नामांकन रद्द किए जाने के चुनाव अधिकारियों के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारियों ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छुपाने पर मीनाक्षी नटराजन की नामांकन रद्द किया था। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरतों का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए थे। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, अमन, चयन और स्थिरता बनाए रखने के संकल्प को दोहराया है। सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की 57वीं सीमा समन्वय बैठक 8 से 21 जून तक नई दिल्ली में BSF मुख्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान आपसी तालमेल वाली गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सुधार और सीमा पार आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त प्रयासों को तेज करने पर सहमति बनी। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। यह आयोजन सतत विस्तार और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सम्मेलन में पवन ऊर्जा क्षेत्र के अगले चरण में ऊर्जा की मांग में वृद्धि पर चर्चा होगी। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में PV सिंधु ने चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में अब सिंधु का मुकाबला जापान की अकानो यामागुची से होगा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में कल रात तक बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। घरेलू शेयर सूचकांक आज 2% की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1695 अंक के उचाल के साथ 75,528 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors.
2: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
3: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
2: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
3: दशकों से हमारी बहनों के पास हुनर भी

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त लेकर हाजिर हूँ मैं रिंकू और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उर्वशी। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी में आज हम आपको लिए चलेंगे एक ऐसे विशिष्ट खाद्य पदार्थ में, जिसे भोजन में, जिससे आपका मन ललचाने लगेगा। जी हाँ, उस खाद्य, उस भोजन का, उस आहार का नाम है दुष्का। जी दुष्का, क्या आप जानते हैं कि किसी भी भोजन की विशेषता उसके मुख्य रूप से इस बात से तय होती है कि वो हमारे शरीर, मन और संस्कृति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। भोजन के

केवल पेट भरने का साधन नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक स्वास्थ्य, स्वाद और परंपरा का अनूठा संगम है। एक अच्छे और आदर्श भोजन की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन धुष्का भी एक ऐसी ही पारंपरिक व्यंजन है। हम बताएंगे आज उसी के बारे में, लेकिन सुनते हैं पहले एक गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे शान की आवाज में फिल्म प्रेम रतन धन पायो से ये गीत। और मैं आपको बता रही थी आज के स्पेशल कार्यक्रम में, जिसमें धुष्का जिसे आप जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे आपको, क्योंकि हर भोजन अपने पीछे एक कहानी और एक संस्कृति को समेटे रखता है। जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि लिट्टी चोखा बिहार की

संस्कृति और इतिहास को समेटे रखता है तो धुस्का झारखंड की और ढोकला गुजरात की संस्कृति की पहचान है। किसी क्षेत्र का भोजन वहां की जलवायु और वहां पैदा होने वाली फसलों पर निर्भर करता है जो वहां के लोगों के शरीर के लिए सबसे अनुकूल होता है। तो आइए जानते हैं धुस्का के बारे में। दोस्तों, धुस्का झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक और खान पान की विरासत का सबसे अहम हिस्सा है। जी हाँ, ये सिर्फ एक पकवान नहीं है बल्कि झारखंडी संस्कृति की पहचान भी है। इसे आम तौर पर सुबह के नाश्ते या फिर शाम के स्नैक्स के रूप में खाया जाता है। यहाँ धुस्का के बारे में अगर हम आपको इतिहास और उसके नाम की उत्पत्ति बताए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है। वैसे धुस्का शब्द की उत्पत्ति झारखंड के स्थानीय भाषाओं जैसे नागपुरी या खोरटा से मानी जाती है। पारंपरिक रूप से इसे धुस्का भी लिखा जाता है। ये व्यंजन मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समुदायों के घरों से निकल कर आया है। पहले के समय में जब मेहमान हमारे घर में आते थे तो घर में मौजूद बुनियादी चीजों जैसे चावल और दाल से तुरंत कुछ खास और भारी नाश्ता बनाने के लिए इस विधि को अपनाया गया था। वैसे ये अन्य व्यंजनों की तरह ही है, जैसे पूरी कचौरी, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग। दिखने में भले ही ये पूरी या कचौरी जैसे लगे, लेकिन इसकी बनाने की विधि और जो बनावट है वो पूरी तरह से अलग है। इसके बारे में हम जानेंगे एक गीत के बाद। आइए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में फिल्म बर्फी से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में फिल्म बर्फी से ये गीत, और मैं बता रही थी आपको कि दुस्का की क्या क्या विशेषताएं हैं। वैसे अनोखी बनावट के कारण भी दुस्का बहुत ज्यादा विशेष अपना महत्व रखता है। तेल में तलते समय ये गुब्बारे की तरह फूल जाता है। सही तरीके से बने दुस्का की पहचान ये है कि इसकी बाहरी परत हल्की सुनहरी और क्रिस्पी यानी कि कुरकुरी होती है, जबकि अंदर का हिस्सा इसका जो जालीदार बेहद मुलायम और स्पंजी होता है। वैसे ये एक नमकीन व्यंजन है। इसमें डाले जाने वाले साबुत जीरे, हींग, अदरक और हरी मिर्च के कारण इसका स्वाद बहुत ही सीधा, सोंधा, चटपटा और सुपाच्य यानी कि पचने में बहुत आसान होता है। हम इसकी रेसिपी, इसकी विधि थोड़े ही देर में बताएंगे, लेकिन सुन लेते हैं ये गीत विजय वेंटिक उत्तरा और केलकर शारिका कपूर की आवाज़ में।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे विजय बेरेटी की उत्तरा केलकर और सारिका कपूर की आवाज में फिल्म डांस डांस से ये गीत, जिसको डांस कर रहे थे मिथुन चक्रवर्ती और साथ में थी स्मिता पाटिल, जो भाई बहन बहन थे। वैसे दोस्तों, इस धुस्त का जो बनाने की रेसिपी है ना, कुछ अलग ही तरह की है। और सच में ये पूरी कचौरी

बिल्कुल भी अलग है। क्योंकि आइए जल्दी जल्दी नोट करते हैं, फिर कागज कलम उठा लीजिए और कलम के साथ एक याददाश्त भी रखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या सामग्रियां हैं वो लग रही है। वैसे आवश्यक सामग्री है, इसमें कच्चा चावल आपको एक कप लेना है, चने की दाल आधा कप लेना है, उड़द की धूली दाल आधा कप लेना है और हरी मिर्च 2-3, अदरक 1 इंच का टुकड़ा ये अदरक ले लेनी है, साबुत जीरा 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, हींग 1 चुटकी और नमक अपने स्वाद के अनुसार, साथ ही में हरा धनिया बारीक कटा हुआ जो कि आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद दुस्का को तलने के लिए तेल चाहिए। अब जल्दी जल्दी इसकी बनाने की विधि आप नोट कीजिए। दाल चावल भिगोए, चावल चने की दाल और उड़द की दाल को अच्छी तरह धोकर एक साथ 5 से 6 घंटे या फिर रात भर के लिए पानी में भिगो दीजिए। उसके बाद भीगे हुए दाल चावल का पूरा पानी निकाल दीजिए। अब मिक्सी जार में इन्हें डालें और साथ में हरी मिर्च अदरक और बहुत थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा और स्मूथ पेस्ट यानी कि बैटर को तैयार कर लीजिए। बैटर को फेटे और उसको आराम करने दीजिए। पिसे हुए बैटर को एक बर्तन में निकाले और हाथों या चम्मच से 4 या 5 मिनट तक अच्छी तरह से फेटे ताकि धुसका स्पंजी बन जाए। इसके बाद बैटर को ढककर कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद तलने के लिए ठीक पहले बैटर में साबुत जीरा, हल्दी, हींग, नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। दोस्तों बैटर ना तो बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला, ये डोसा बैटर जैसा ही होना चाहिए। अब उसको क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम करना चाहिए। अब एक गहरी खिचड़ी यानी कि बैटर में भरकर तेल के बीच में एक ही धार में गिराए और फिर धुसका उस पर तुरंत फूलकर तेल के ऊपर तैरने लगेगा। आंच को मध्यम करें और दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलकर इसको निकाल लें। दोस्तों ये तो थी धुसका बनाने की रेसिपी, लेकिन धुसका के साथ पारंपरिक रूप से काले चने और आलू की रसीदार सब्जी बनाई जाती है जिसे प्रेशर कुकर में झटपट तैयार किया जा सकता है। जी हाँ, आपको वो भी सामग्रियां मैं बता दे रही हूँ कि आवश्यक सामग्री क्या क्या है। आपको काले चने 1/2 कप, रात भर पानी में भींगे होने चाहिए, आलू 3-4 उबले हुए कच्चे चकोर कटे हुए और प्याज 1 बड़ा बारीक कटा हुआ, टमाटर 2 बारीक कटे हुए और या फिर आप प्यूरी, टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही में 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च और 1 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 चुटकी हींग। अब क्या करना है, आपको 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1/2 छोटा चम्मच छोले चना मसाला। अब तो 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल बेहतर स्वाद देता है, इसलिए सरसों का तेल यूज कर सकते हैं। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। वैसे नमक जो है स्वाद अनुसार और हरा धनिया सजाने के लिए। अब क्या करना है, प्रेशर कुकर में तेल गरम करें। तेल गरम होने पर जीरा, तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग का तड़का लगाएं। उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज डालें उसमें और उसे हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च डालकर 1 मिनट तक भूनें ताकि कच्चापन निकल जाए। इसके बाद कुकर में टमाटर डालें, साथ ही हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, चना मसाला और नमक डाल दीजिए। मसाले को तब तक भूने जब तक कि तेल अलग ना होने लगे। उसके बाद इसमें रात भर भीगे हुए कच्चे चावल, कच्चे चने और कटे हुए आलू डाल दीजिए। मसालों के साथ चने और आलू को 2 से 3 मिनट तक मध्यम आंच पर अच्छी तरह से भूनिए। फिर सब्जी में आवश्यकता अनुसार लगभग 1.5 या फिर 2 कप पानी डालें। कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और मध्यम तेज आंच पर इसे दम मारने के लिए 4 से 5 सीटी आने तक पकने दीजिए, जिससे कि चने पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें देंगे हम फिनिशिंग टच। जी हाँ, कुकर का प्रेशर अपने आप खत्म होने पर ढक्कन खोलिए, करछी से थोड़े से आलू मैश कीजिए, इससे ग्रेवी गाढ़ी और लटपती हो जाएगी। ऊपर से गरम मसाला और बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे मिक्स करिए। फिर दोस्तों इस रेसिपी को हम फिर से हम बोल सकते हैं, लेकिन समय कम है और इसमें

0: और बात कि आप गर्मा गर्म फूले फूले धुसका और चटपटी चना आलू की सब्जी तैयार है सुबह के नाश्ते या संडे ब्रंच में सेव करें सर्व या फिर इसको सर्व करके आप ख्याति प्राप्त कर सकती हैं। अगर आपको प्याज लहसुन के बिना भी ये करना है तो भी ये बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, इतनी बड़ी रेसिपी बताई है तो इसमें तो भूख तो लगी होगी। भूख की कोई बात नहीं, मोहित चौहान और पलक मुच्छल की आवाज में सुनते हैं ये गीत, आपकी भूख मिटा देगी।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

जी हाँ दोस्तों, मोहित चौहान और पलक मुच्छल की आवाज में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म बजरंगी भाईजान से। वैसे तो भूख आप सभी को लग रही थी, मुझे भी, लेकिन दोस्तों संतुलित आहार जो होता है ना, आदर्श भोजन जिसे कहते हैं, कि आदर्श भोजन वो है जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर सही मात्रा में मौजूद हो। भोजन जितना ताजा और प्राकृतिक रूप में होगा उसकी पोषण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। बासी या अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन अपनी विशेषता को खो देते हैं। वैसे किसी भी भोजन की पहली पहचान उसका स्वाद, मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कड़वा, कसैला और उसकी खुशबू होती है। अच्छी सुगंध भूख को बढ़ाती है और पाचन रस को सक्रिय करती है। भोजन का टेक्सचर जैसे कि क्रिस्पी, क्रीमी, सॉफ्ट या चबाने योग्य होना खाने के अनुभव को और भी बेहतर बनाता है। दोस्तों हर भोजन अपने पीछे एक कहानी और संस्कृति को समेटे रहता है। दूसरा भी कुछ ऐसा ही भोजन है। वैसे भोजन की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि वो शरीर द्वारा आसानी से पचाया जा सके। आयुर्वेद के अनुसार जो भोजन पचने में हल्का होता है वो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और सुस्ती नहीं लाता। सात्विक और सही तरीके से पकाया गया भोजन मन को शांत और शरीर को ऊर्जावान भी रखता है। और एक खास बात यह है कि भोजन लोगों को एक साथ लाता है। त्योहारों, शादियों या फिर पारिवारिक मुलाकातों में भोजन साझा करना प्रेम और एकता का प्रतीक है। वैसे भोजन के साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी हुई है और यह हमारी मानसिक शांति और सुखी जीवन का भी संदेश देता है। तो दोस्तों आज विशेष पकवान में हमने धुसका और उसकी खास कच्चे चने आलू की सब्जी के बारे में जाना। अगले अंक पे आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर

0: पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी आकाशवाणी कोलकाता का संस्कृत चैनल, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिंदी वार्ता, जिसमें आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ रिंकू।

दोस्तों हिंदी वार्ता में आज हम बात करेंगे स्वच्छता के महत्व के विषय में। जी हाँ, स्वच्छता क्या होती है? ये स्वच्छता अपने घर आंगन को साफ रखना ही तो स्वच्छता है। मानसिक और स्वास्थ्य की एकाग्रता के लिए स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। आइए आज हम इसी के बारे में हिंदी वार्ता में बात करते हैं। हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है स्वच्छता। जी हाँ, महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छता केवल एक अच्छी आदत नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का आधार है। स्वच्छता के महत्व का विस्तार से अगर हम वर्णन करें तो हम पाएंगे कि हमारे

आसपास जमी गंदगी बैक्टीरिया और वायरस को जन्म देती है। नियमित सफाई से हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, त्वचा संबंधी संक्रामक रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उपाय लगाएं। वैसे स्वच्छ वातावरण में रहने और साफ भोजन और पानी सेवन करने से हमारा शरीर बार बार बीमार नहीं पड़ता, जिससे हमारी इम्यूनिटी और भी ज्यादा मजबूत होती है और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। हम अगर स्वच्छ रहे तो इससे हमारे शरीर में तनाव की कमी भी कम होती है। एक बिखरा हुआ और गंदा कमरा, एक या फिर कार्यालय जो गंदा हो, वो मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन को बढ़ाता है। इसके विपरीत साफ सुथरा वातावरण मन को शांति देता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। स्वच्छ और व्यवस्थित जगह पर काम करने से ध्यान केंद्रित करना आसान होता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई और कामकाजी लोगों की आदत भी बढ़ती चली जाती है। जब कोई परिवार या समाज स्वच्छ रहता है तो बीमारियों पर होने वाला मेडिकल खर्च भी बच जाता है। ये पैसा शिक्षा और विकास में काम आता है। जो देश या शहर साफ सुथरा होता है तो विदेशी पर्यटक उस पे अधिक आते हैं, इसलिए स्थानीय रोजगार और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलती है। दोस्तों, कचरे का सही प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट करने से वायु, जल और भूमि प्रदूषण कम होती है। प्लास्टिक का सही निपटान हमारे जल स्रोतों और समुद्री जीवों की रक्षा भी करता है। स्वच्छ पर्यावरण से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन और पीने के लिए साफ पानी मिलता है, जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। व्यक्तिगत स्वच्छता, इसके लिए अंतर्गत रोजाना स्नान करना आवश्यक है, साफ कपड़े पहनना, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोना और नाखूनों और दांतों की नियमित सफाई इसमें शामिल होती है। यह हमें व्यक्तिगत रूप से कीटाणुओं से बचाता है। इसके साथ साथ इसके अंतर्गत अपने घर के बाहर गलियों, पार्कों, नदियों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना भी शामिल होता है। सड़क पर कचरा नहीं फेंकना है, सूखे गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालना है, जो इस स्वच्छता का, सार्वजनिक सामाजिक स्वच्छता का एक हिस्सा है। दोस्तों, स्वच्छता किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है। स्वच्छता का अर्थ केवल शरीर या घर को साफ रखना नहीं होता है, बल्कि मानसिक और वैचारिक शुद्धि भी है। स्वच्छता मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक होता है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में सफाई की उत्तम व्यवस्था थी। स्वच्छता भक्ति से भी बढ़कर है, ये महात्मा गांधी के विचार थे। शरीर, दांतों, नाखूनों की सफाई, साफ कपड़े पहनना और हाथों से उसको धोना, घर के कोनों, रसोई घर, शौचालय की नियमित सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, मोहल्ले, सड़कों, पार्कों, स्कूलों और अस्पतालों को साफ करना भी सामाजिक सार्वजनिक स्वच्छता है। मन में सकारात्मक विचार रखना और ईर्ष्या, द्वेष और गंदगी से दूर रहना, ये वैचारिक मानसिक स्वच्छता है। और सबसे स्वच्छता के प्रमुख लाभ भी हमें उठाने चाहिए, जो उत्तम स्वास्थ्य है, कीटाणुओं, मच्छरों और वायरस का खात्मा, जिससे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों पर रोक लगती है। स्वच्छता होने पर स्वच्छ वातावरण में रहने से तनाव कम होता है और कार्य की क्षमता बढ़ती है। बीमारियों पर होने वाले खर्चे में कमी आती है, जिससे परिवार और देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। साथ ही इसके राष्ट्रीय गौरव बढ़ते हैं, आर्थिक लाभ मिलती है, साफ सुथरे देशों की छवि वैश्विक स्तर पर बेहतर होती है और पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा भी मिलता है। बीमारियों का तेजी से फैलना बीमारियों का रूप लेना होता है। जी हाँ, अस्वच्छता के बहुत सारे नुकसान हैं। क्या क्या है, आइए जानते हैं।

अस्वच्छता के बहुत नुकसान है दोस्तों। बीमारियों का तेजी से फैलना और महामारियों का रूप लेना, गंदगी के कारण पर्यावरण प्रदूषित होना, हवा, पानी और मिट्टी का दूषित होना, समाज में नकारात्मकता, ऊर्जा और सुस्ती का माहौल बनाता है ये अस्वच्छता का माहौल। जी हाँ, और साथ ही ये

0: रही हैं। बीमारियों के का तेजी से फैलना और महार नगरीय रूप लेना, गंदगी के कारण पर्यावरण प्रदूषित होना, साथ ही में हवा पानी भी प्रदूषित करना, समाज में नकारात्मक ऊर्जा और सुस्ती का माहौल भी बढ़ाना अस्वच्छता के नुकसान है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई थी पहला स्वच्छ भारत अभियान, जो भारत सरकार की पहली पहल थी, स्वच्छ भारत अभियान। इसका उद्देश्य था खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF भारत का निर्माण, कचरा प्रबंधन और हर नागरिक को जागरूक करना। इसका असर आज ये अभियान एक जन आंदोलन बन चुका है और लोगों की आदतों में बड़ा बदलाव आया है, जिसके कारण हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कचरा हमेशा डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान में ही डाले और सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग करके रखे। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम बिल्कुल भी ना करें। अपने जन्मदिन या फिर विशेष अवसरों पर वृक्षारोपण करें और जल स्रोतों, नदियों, तालाबों को कभी गंदा ना करने की कोशिश करें। स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, बल्कि निरंतर चलने वाली जीवन शैली है ये। जब तक देश का हर नागरिक जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, तब तक पूर्ण स्वच्छता असंभव है, क्योंकि प्लास्टिक के कचरे आजकल के बहुत बड़े कचरे हो चुके हैं, जो देश के भविष्य को खतरे में डालने के लिए तैयार है। स्वच्छता किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि ये एक सामूहिक कर्तव्य है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान भी इसी सोच को बढ़ावा देता है। जब देश का हर नागरिक स्वच्छता को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा, तभी एक स्वस्थ, समृद्ध और आदर्श समाज का निर्माण हो सकेगा। ये आशा करते हुए कि स्वच्छता बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है और देश का प्रत्येक नागरिक इस बात को समझे और स्वच्छता के महत्व को जानकर स्वच्छ रहे, स्वच्छ नगर बसाए, इसी आशा करते हुए अगले अंक में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना कथितं यत् राष्ट्रनिर्माणस्य पूर्णक्षमतायाः साक्षात्काराय गतद्वादशवर्षेषु सर्वकारेण महिलाभ्यः अनुकूलं वातावरणं निर्मितमिति। गृहमन्त्री अमितशाहः नवदेहल्यां श्री अमरनाथयात्रायाः सज्जतायाः समीक्षार्थम् उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। केन्द्रीय प्रशासनेन उद्योगमुद्दिश्य पेट्रोल पंप इत्येतेभ्यः पेट्रोल डीजल इत्येतयोः क्रयणं प्रतिबंधितम्। संयुक्तराष्ट्रसंघः ओमान देशस्य तटे तैल नौकास्थानां भारतीय नाविकानां उपरि कृताक्रमणानां निन्दाम् अकरोत्। भारतीयस्य दिग्गज लक्ष्य भेदन स्पर्धायाः क्रीडकस्य प्रशिक्षकस्य च जसपाल राणा इत्यस्य 49वें वयसि मृत्युः अभवत्। अपि च अस्मिन् वर्षे फीफा विश्वकप क्रीडायां टोरोंटो नगरे ग्रुप बी क्रीडायां केनडा देशः बोस्निया हर्जेगोविना देशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवदत् यत् वित्तीय समावेशे उद्यमशीलता इत्यतः आरभ्य शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, स्वच्छता, गृहनिर्माण, क्रीडाविज्ञानं, प्रशासनञ्च यावत् विविधेषु क्षेत्रेषु महिलाः प्रमुखां भूमिकां निर्वहन्त्यः सन्ति। सामाजिकप्रसारमाध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् ड्रोनतन्त्रज्ञानमित्यादिषु उदयोन्मुखक्षेत्रेषु महिलानां वर्धमानसहभागित्वेन अवसरस्य नूतनाः मार्गाः उद्घाट्यन्ते। सम्पूर्णे देशे च विकासपरिदृश्यं परिवर्तते। तत्पूर्वम् एकस्मिन् कार्यक्रमे भाषमाणः प्रधानमन्त्री अवदत् यत् गतद्वादशवर्षेषु NDA इत्यस्य सर्वकारः महिलानां नेतृत्वे

शामी महफिल जलाकर हम आपका आगाज करते हैं। जी हां, सम्मेई महफिल जलाकर हम आपका आगाज करते हैं। अपनी आवाज को हुस्ने अंदाज करते हैं। शायरी और गजल की इस हसीन शाम पर हम दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 297.6 मीटर 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। और इस वक्त मैं हाजिर हूँ रिंकू और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुल गुलशन। दोस्तों, गुल गुलशन के इस खूबसूरत शाम में आप सभी सुरीले दिलों, शायराना मिजाज और दोस्तों के मौसिकी के कदरदानों की तहे हम आपका स्वागत करते हैं। आज की ये शाम आम शाम नहीं है, बल्कि आज सुर भी सजेंगे इस शाम में, अल्फाज भी महकेंगे और कवाली की थाप दिल भी झूम उठेंगे। जी हाँ, गजल के रंग होगा, लोक संगीत होगा और साथ में होगी कवाली। तो जिक्र जब किया है, हमारे लोक संगीत सबसे पहले है। आइए, हमारी भारत की संस्कृति से सजा हुआ ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म राम लखन से सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि ये गुलगुलशन का कार्यक्रम में हम बेहद आपके करीब, आपके संस्कृति के मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ लता मंगेशकर की आवाज तो आप सुन ही चुके हैं। लेकिन अब जैसा कि ये पहले कहा जा चुका है कि इस शाम का आगाज हम गजलों के साथ भी करेंगे। जी हाँ, गजल दिल की धड़कन को बयां करने का एक जरिया है, तो माहौल में थोड़ी मोहब्बत और थोड़ा सुकून घोलने के लिए पहले फनकार और मंद पद हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं जगजीत सिंह और आशा भोसले की आवाज में। वो कहते हैं ना कि जिक्र जब होगा मोहब्बत का तो बात आपकी होगी, जिक्र जब होगा मोहब्बत का तो बात आपकी होगी, गजल जब कोई सुनेगा तो याद आपकी होगी।

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

जी हाँ दोस्तों, लफ्जों के दांत नहीं होते, मगर ये जो काट लेते हैं जब तक वह वह ना हो। दोस्तों जरा सा कंजूसी छोड़िए और खुलकर दाद दीजिए। जी हाँ, आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और आशा भोसले को, निदा फाजली की गजल थी। वैसे दोस्तों गजलों की इस रूहानी और पुरसुकून सफर के बाद अब वक्त है माहौल में जोश और रूहानियत और सूफियाना रंग घोलने का, जिसके लिए हमारी ये महफिल गुलगुलशन का कार्यक्रम बहुत बेकरार है। जी हाँ, अब शुरू होने जा रही है कव्वाली की महफिल। तालियों की गूंज और वाह वाह के शोर में दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब मंच पर आ रहे हैं हमारे कव्वाल अजीज नाजान। दोस्तों शेर है कि नमाज इश्क अदा करेंगे आज हम सब यहाँ, कव्वाली की तान पर झूमेगा ये सारा जहाँ, उठाओ हाथ की ताली से गूंज उठे ये गुलगुलशन, दिलों को छूने आ रहे हैं सूफियाना समा।

सुकून।

जी हाँ दोस्तों, सुना है कि कव्वाली कहने से रूह झूम उठती है, वैसे लफ्ज उनके होठों से मिलकर दुआ बन जाते हैं। जरा गौर से इन सभी गीतों को सुनिए, इस सुरीली आवाज को। ये वो नगमे हैं जो सीधे दिल में उतर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कव्वाली सुन रहे थे अजीज नाजान से। अब दोस्तों, वक्त की सुई जो है बहुत धीरे धीरे और जल्दी जल्दी निकल रही है। आपको 6:53 हो चुके हैं, मेरे पास समय कम है, लेकिन आपको सुनाई देती हूँ सुनू निगम और श्रेया घोषाल के आवाज में ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म परिणीता से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गीत। वैसे दोस्तों, गुलशन की बहारों में एक रंग आपका भी है, इस महफिल के चमकते सितारों में एक रंग आपका भी है। यूं तो महफिलें सस्ती हैं रोज जमाने में, मगर इस महफिल की रौनक में अंदाज आपका भी है। जी हाँ श्रोताओं, हमारे गुलगुलशन के कार्यक्रम में हर तरफ से आपका सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप है श्रोता और हम हैं आपको कार्यक्रम सुनाने वाले। तो चलिए, वक्त की घड़ियां बता रही है कि मुझे जल्दी जल्दी आपको गीत सुनाना है, तो देरी नहीं करते हैं और सुना देते हैं आपको लता मंगेशकर, आशा भोसले और जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। इसी के साथ रिंकू को इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित

0: समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The External Affairs Ministry today summoned Chargé d'Affaires of the US Jason Meeks and lodged a strong protest regarding continuing attacks by US naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. This has already resulted in the tragic and avoidable loss of 3 Indian lives. The US envoy was called in by Additional Secretary Americas in the Ministry of External Affairs in New Delhi. The ministry said in a statement that it once again conveyed its deep concern over the use of lethal and deadly force against civilian shipping. The ministry said such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said that the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development, and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Yatra. During the meeting, Mr. Shah directed for creating impregnable multi-layered security grid along the pilgrimage route with the coordinated efforts of the Central Armed Police Forces, Jammu and Kashmir Police and all security agencies. The minister emphasized to further strengthen the security framework with the extensive use of modern technologies such as drones, CCTV surveillance and advanced monitoring systems. Fencing work in the border areas of West Bengal has started.

বোঝাতে চেয়েছি কতবার, সে তো কিছু হাসি আর কিছু বেদনা।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल कार्यक्रम इस वक्त दर्पण का, और लेकर हाजिर हूँ मैं रिंकू।

जी हाँ दोस्तों, दर्पण में सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक नज़र, जिसमें आज हम आपके लिए बात करेंगे विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 2026 के विषय में। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे फिर विधि विधान और समाधान में, जो कि चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम के विरोध में है। दोस्तों, हर वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है, ताकि बाल श्रम के नकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता को फैलाई जा सके। जी हाँ, और इसे समाप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके। ये दिन उन बच्चों के संघर्षों के सामने लाता है जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं और सुरक्षित बचपन से वंचित रखा जाता है, क्योंकि वे कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर होते हैं। सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, नियोक्ता, श्रमिक संगठन और नागरिक समाज के समूह इस अवसर पर बाल श्रम को रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए कि बाल श्रम है क्या, तो आइए जानते हैं बाल श्रम के बारे में।

आश्रम से तात्पर्य उन कार्यों से है जो बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा, सम्मान और समग्र विकास छीन लेते हैं। जी हाँ, इसमें वे कार्य शामिल होते हैं जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या फिर नैतिक रूप से बच्चों के लिए हानिकारक का विषय है। दोस्तों, वैसे इस वर्ष विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस का विषय भी ऐसा ही कुछ छूनकर रखा गया है। रेड कार्ड टू द चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर अडल्ट्स। वैसे दोस्तों, इतिहास क्या है बाल श्रम का? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 2002 में इस दिवस की शुरुआत की थी ताकि बाल श्रम के मुद्दे को विश्व स्तर पर प्रमुखता दी जा सके, इसे समाप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहन मिले। वैसे 1999 में ILO कन्वेंशन नंबर 182 अपनाया गया जो बाल श्रम के सबसे खराब रूपों पर केंद्रित था। 2002 में पहला विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया गया। 2015 में बाल श्रम उन्मूलन को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया गया और 2021 में बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया और वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जागरूकता और कार्रवाई अभियान अभी भी जारी है। वैसे दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि बाल श्रम के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहन किया जा सके, शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित किया जा सके, बच्चों के शोषण को रोका जा सके, श्रम कानून को सुदृढ़ कर रहे और सामाजिक सुरक्षा के उपायों को समर्थन दे सके, खतरनाक बाल श्रम को समाप्त करना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना भी है। वैसे दोस्तों, बाल श्रम के बहुत प्रमुख कारण भी होते हैं। पहला कारण होता है गरीबी और दूसरा कारण होता है शिक्षा की कमी, क्योंकि गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बच्चे जो है बाल श्रम के एक अभिन्न अंग बन जाते हैं। वैसे वयस्कों में बेरोजगारी की समस्या भी तीसरी समस्या है, सामाजिक असमानता है, प्रवास और विस्थापन है, कानून का कमजोर प्रवर्तन है और परिवार का बहुत सारा कर्ज है, प्राकृतिक आपदाएं और संघर्ष भी है। वैसे अगर हम बात करें बाल श्रम के प्रभावों की तो इससे स्वास्थ्य जोखिम में पड़ती है, चोट या फिर बीमारियों का खतरा, शैक्षिक नुकसान, स्कूल छोड़ने और निरक्षरता की समस्या और इसमें तनाव और भावनात्मक आघात भी होते हैं जिससे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं, सीमित सामाजिक विकास, सामाजिक अलगाव और भविष्य के अवसरों में कमी इसका आर्थिक नुकसान बन जाता है। वैसे दोस्तों, इसका महत्व यह है कि बाल श्रम के मुद्दे को ये बहुत ही स्पष्ट रूप से जागरूक करता है, प्रभावी कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देता है, स्कूलों में नामांकन और निरंतरता को बढ़ावा देता है, बच्चों की भलाई का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत भी करता है। तो बाल श्रम दिवस की ओर से आज 2026 में हम आपको सामने एक नज़र में चाइल्ड लेबर और उसके श्रमिक दिवस के बारे में, महत्व के बारे में बात कर रहे थे।

दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे एक नज़र जिसमें हम बात कर रहे थे विश्व बाल श्रम के विरोध में उसके दिवस के बारे में और अब बात करते हैं विधि विधान और समाधान जो कि हम बात करेंगे विश्व जो बाल दिवस है विश्व बाल श्रम के विरोध में एंडमेंट एक्ट 2016 के विषय में भारत का बाल श्रम निषेध एवं विनिमय संशोधन अधिनियम 2016 दोस्तों भारत की केंद्रीय विधायिका ने बाल श्रम प्रथाओं को विनियमितता के साथ करने के लिए बाल एवं किशोर श्रम यानी कि निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 बाल श्रम अधिनियम नामक कानून बनाया था। केंद्रीय विधायिका ने वर्ष 2016 में बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और यह संशोधन 30 जुलाई 2016 से प्रभावी हो गए। उक्त संशोधन के अनुसार बाल श्रम अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम यानी कि निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया है। किसी भी प्रतिष्ठान में चाहे वो खतरनाक हो या नहीं बाल श्रम के साथ अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रोजगारों पर पूर्ण रूप से ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। बच्चों को केवल परिवार की सहायता करने पारिवारिक व्यवसाय में काम करने या स्कूल के बाद या छुट्टियों के दौरान बाल कलाकार के रूप में काम करने की अनुमति है। इस संशोधन में पहली बार किशोर श्रम की अवधारणा को शामिल किया गया है। किशोर को 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति के रूप में उसे परिभाषित किया जा सकता है। इसके साथ ही यह किशोर 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित हो सकते हैं। इस संशोधन में पहली बार किशोर श्रम की अवधारणा को शामिल किया गया है और कहा जाए कि इस प्रक्रिया या व्यवसाय को छोड़कर किशोर श्रम के रोजगार की अनुमति भी दे देता है। खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं की संख्या 83 से घटकर केवल 3 रह गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों को अब आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के बावजूद समझौता योग्य और संज्ञेय बना दिया गया है। बाल एवं किशोर कोष की स्थापना का प्रावधान जिसमें जुर्माने की सभी राशि जमा की जाएगी प्रभावित बच्चे बच्चों के माता पिता और अभिभावकों पर नियोक्ताओं से अलग से उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। अधिनियम में बढ़ी हुई सजा और कारावास का प्रावधान है जो कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक हो सकता है और जुर्माना 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हो सकता है। पहले बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत उल्लंघन के लिए कम से कम 3 महीने से लेकर 1 साल तक के कारावास और 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था, मगर इस नए संशोधन में देखने में तो प्रगतिशील लगते हैं लेकिन इनके कुछ नकारात्मक पहलू भी है। नए संशोधनों के तहत बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन साथ ही पारिवारिक उद्यमों व्यवसायों में उन्हें काम पर रखने की अनुमति भी दी गई है। चूंकि बाल श्रम की अधिकांश गतिविधियां समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में होती है जहां नियमन बहुत कम है, इसलिए नए संशोधन के माध्यम से इस पर रोक लगाने के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा खतरनाक उद्योगों की सूची में भारी कमी की गई है जिससे रासायनिक मिश्रण इकाइयों कपास फार्मो बैटरी रिसाइकलिंग इकाइयों और ईंट भट्टों जैसे उद्योगों जो कि वास्तव में खतरनाक है नियोक्ताओं को किशोर श्रमिकों को काम करने की अनुमति मिल सकती है और ये शायद उन्हें काफी कम कीमत पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अब सरकार के लिए किशोर श्रमिकों और पारिवारिक व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के कार्य स्थितियों पर कड़ी निगरानी रखना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए अधिक कर्मियों
की तैनाती की आवश्यकता होगी, जिनकी वर्तमान में कमी है। जमीनी हकीकतों की प्रभावी निगरानी के लिए सरकार को उन गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को शामिल करना है जो कि सशक्त बन सके, और शामिल करके सशक्त बनाना चाहिए भी, जो इस उद्देश्य के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और साथ ही में जो हमारे इस अधिनियम एक्ट है 2016 में भारत का बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, इसे आपको साझा करना है। और हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि आप भी समझें कि बाल श्रम एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे देश के भविष्य को खतरे में डाल रही है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दर्पण कार्यक्रम में विधि विधान और समाधान, और इससे पहले आपने सुना एक नजर। लेकिन दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में अभी हो रहे हैं 7:43, लेकिन अभी वक्त है कुछ फिल्मी गीतों का, तो आइए सुनते हैं, देरी नहीं करते हैं, और श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खां की आवाज में सुन लेते हैं ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत फिल्म सिंग इज किंग से। लेकिन दोस्तों अभी जो है कि स्टूडियो में बज रहे हैं 7:49, आइए सुना देती हूँ आपको मनहर उदास और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत फिल्म जान से।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे मनहर उदास और अलका याग्निक को फिल्म जान से। वैसे दोस्तों, गीत के बोल लिख रहे थे आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया था आनंद मिलन ने। दोस्तों ये फिल्म वैसे बहुत हिट हुई थी, इसके प्रोड्यूसर अशोक घय थे और डायरेक्टर राज कंवर। दोस्तों वैसे हम बता दें कि बीडीएफ में 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल। कार्यक्रम चल रहा था दर्पण, लेकिन समय की गतिविधियां बता रही है कि अभी आपसे इजाजत लेने का समय हो चुका है, इसलिए अगले में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: সংযুক্তা প্রচার তরঙ্গে শুনছিলেন নানা রঙের গান। এবার সমাচার সন্ধ্যা।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে প্রিয়ঙ্কা অরোড়া। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से

0: जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
2: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई

0: से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
1: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम बीएसएफ चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
0: कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच एनटीए ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच

0: ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, অনুষ্ঠানে ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভাবন ও ব্যবসায়িক সুযোগের ওপর আলোকপাত করা হবে। ব্যাডমিন্টনে সিডনিতে আয়োজিত অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে মহিলা বিভাগে সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন ভারতের পিভি সিন্ধু। আজ কোয়ার্টার ফাইনালে চাইনিজ তাইপের চেন সু ইউকে 21-6, 21-9 ব্যবধানে পরাজিত করেন তিনি। অন্যদিকে প্রতিযোগিতার পুরুষ ডাবলস বিভাগের ভারতের হরিহরন আমসাকরুন ও এম আর অর্জুনের জুটি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। পশ্চিমবঙ্গে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ কে জমি হস্তান্তর ও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে অরুণ কুমার। मुख्य समाचार। भारत ने अमेरिकी दूतावास उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिका के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर ईरान के अंतिम निर्णय न लेने से पश्चिम एशिया में अनिश्चितता का कायम। ईरान ने कहा, प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे। उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और पद के दुरुपयोग पर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सजा सुनाई। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का आज रात एजबेस्टन में आगाज। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों के कारण हुई त्रासदी में 3 भारतीयों की जान बचाई जा सकती थी। अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव ने तलब किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि असैन्य जहाज पर जानलेवा और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और यह बात अमेरिकी राजनयिक को बताई गई। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है और मुश्किल की इस घड़ी में संवेदनशील क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालती है। श्री जेसन मीक्स से कहा गया कि भारत की यह गंभीर चिंता अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचा दी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना सभी आवश्यक उपाय करे ताकि आम नागरिकों की जान न जाए। मंत्रालय ने दूसरी बार किसी अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया। उधर ईरान ने वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए इसे क्रूर बताया। ईरान ने अमेरिका पर वैश्विक शांति और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। ईरान ने विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जवाबदेही की मांग की। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने जल डमरू मध्य के पास 2 ईरानी ड्रोन को रोका है। लेबनान में सीमा पार झड़पें और सुरक्षा अभियान जारी है। इसराइल कई मोर्चों पर सैन्य दबाव बनाए हुए है। समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई हैं। लाल सागर और खाड़ी के जल क्षेत्र में व्यवधान ऊर्जा बाजारों के लिए नई चिंताएं पैदा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और होर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के

0: साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: मिस्र के विदेश मंत्रालय ने ईरान और अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर आशा व्यक्त करते हुए दोनों देशों से जल्द ही एक निर्णायक समझौते पर सहमति बनाने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मिस्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ नियोजित सैन्य हमलों को रद्द करने की घोषणा की सराहना करता है। मंत्रालय ने कहा कि मिस्र क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के समन्वय और सहयोग से तनाव को कम करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप्स की संख्या लगभग 350 थी। अब भारत में 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलैन अख्तर।
1: विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह ही नहीं बल्कि ये यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। एक रिपोर्ट।
4: सियोल केंद्रीय जिला न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति को दुश्मन को लाभ पहुंचाने और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी ठहराया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यूंग को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि यून ने अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया को उकसाने और मार्शल लॉ लागू करने का आधार तैयार करने के उद्देश्य से ड्रोन अभियानों को मंजूरी दी थी। पूर्व रक्षा खुफिया कमान प्रमुख यो इन ह्यूंग को 15 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। पूर्व ड्रोन संचालन कमान प्रमुख किम योंग डे को 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। 10वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच आज रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम अपना पहला T20 विश्व कप खिताब जीतने का लक्ष्य रखेगी। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स मैदान पर होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अमेरिकी दूतावास उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों

वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिका के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी प्रस्तावित समझौते पर ईरान के अंतिम निर्णय न लेने से पश्चिम एशिया में अनिश्चितता कायम। ईरान ने कहा, प्रमुख मुद्दे अभी भी अनसुलझे। उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और पद के दुरुपयोग पर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की सजा सुनाई। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव

जिस देश में गंगा बहती है छाया छवि थेके गान शुनछेन शिल्पी मुकेश।